मौजूद सामईन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान फरमाया कि इस साल मैं खुद हज के लिए जाऊंगा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ और आपके साथ हज करने की सआदत हासिल करने के लिए तमाम अहले मदीना और क़ुर्बो जवार में जितनी भी मुस्लिम आबादियां थीं, तमाम के तमाम लोग इस काफ़िले में और इस हज में शरीक होने के लिए तैयार हुए। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अरब के वो तमाम कबीले जहाँ तक इस्लाम पहुँच चुका था उन सब तक ये पैगाम और ऐलान फरमाया कि इस साल अल्लाह ताला के हबीब, अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरीज़ाए हज अदा करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सफ़र हज पर ले जाने की खबर की तशहीर कर दी गई और बहुत ज़्यादा मुसलमान हर जगह से इस हज में शरीक होने के लिए तशरीफ़ लाए, इनकी इस बात की मुसलमानों को जमा करने की कुछ वजूहात थीं। एक इसकी वजह और मकसद तो ये था कि मुसलमानों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ हज करें ताकि उनको हज अदा करने का सही तरीक़ा मालूम हो जाए और क़यामत तक आने वाले लोगों को वो इस बात की तालीम दे सकें। दूसरी बात ये भी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने इरशादात के मुताबिक कई बार इस हकीकत की तरफ इशारा किया था कि इस मकाम पर मेरी ये तुमसे आखिरी मुलाकात है। अपनी उम्मत को अलविदा कहने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कुछ अहम नसीहतें उन्हें करना चाहते थे, इसलिए तमाम अहले इस्लाम को इस इरादा सफ़र से आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मुत्तले फरमाया। हर शख्स अपने रऊफ व रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इन नसीहतों को अपने कानों से सुने और मरते दम तक उन पर अमल भी करे और दूसरों तक भी पहुँचाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये चंद वजूहात थी जिनकी वजह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को हज के मौका पर अपनी ज़िंदगी में जमा होने का ऐलान फरमाया।

जो बुज़ुर्ग, जो माएँ बहनें बच्चे घरों में हस्पतालों में बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सब को शिफा अता फरमाए। नमाज जुमा अगर आप लिवरपूल या उसके मज़ाफात में क़ुर्ब जवार में है तो लिवरपूल मुसल्ला में नमाज जुमा का अहतमाम किया जाता है। उर्दू में बयान भी आपको सुनने को मिलेगा जो कि मिल रोड 14 मिल रोड लिवरपूल, वहाँ पर 1 से 1:30 बजे तक नमाज जुमा से पहले उर्दू में बयान और उसके बाद 1:30 बजे नमाज जुमा अदा की जाती है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया।